0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Ladies and gentlemen, it's traditional man, Neo Kello.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो इटीविनो और रेडियो इटीविनो और रेडियो
0: मैं
1: इटीविनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: Ladies and gentlemen, it's traditional man, Neo Kello,